किसे पाछे इतने ना फिरे जितने तेरे पीछे भटक रहे हैं। ला क्या छाती का कह देना आई लव यू छोरे तेरे के सांस अटक रहे हैं।

0: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DS।

गुड मॉर्निंग सुप्रभातम सत श्री अकाल गंगापुर सिटी में आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों फिलहाल आप मेरे साथ ट्यून कर रहे हैं 99.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का भारत।

दोस्तों फिलहाल गंगापुर सिटी का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास है और अब हम इस कार्यक्रम को यहीं विदाई देकर आपको लेकर चलते हैं हमारे अगले कार्यक्रम यानी आपकी मनपसंद फेवरेट हेलो फरमाइश में।

0: गुड मॉर्निंग सर।
1: गुड मॉर्निंग, नाम बताएं।
0: मोनिका बोल रहे हैं सवाई माधोपुर से सर।
1: मोनिका जी बताएं, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
0: फूल मैं भेजूं पर तेरा पता मालूम नहीं।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं मैम आपकी फरमाइश। के सॉन्ग रेडियो डीएस में खुल के धन्यवाद।

0: हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशंसा अग्रवाल, 9th क्लास। रिसेंटली मैंने क्रेस साइंस ओलंपियाड में 6th जोनल रैंक प्राप्त की है। मैं डीएस साइंस एकेडमी में 6th क्लास से प्री फाउंडेशन में हूँ। डीएस में आने से पहले फाउंडेशन क्या होता है उससे मैं बिल्कुल ही अनजान थी। यूँ तो बहुत सारे संस्थान फाउंडेशन पढ़ाने का दावा करते हैं, लेकिन जब वहाँ के टेस्ट पेपर्स और मटेरियल की तुलना की जाती है तो वह डीएस के मटेरियल से बहुत ही कम स्तर के प्रतीत होते हैं। डीएस में हमें राष्ट्रीय साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सभी ओलंपियाड्स की तैयारी करवाई जाती है, इसलिए डीएस में पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंची हूं कि यदि प्री फाउंडेशन लेना हो तो पूर्वी राजस्थान में डीएस एकमात्र संस्थान है जो इस कसौटी पर खरा उतरा है। आइए IIT और नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए डीएस से जुड़कर अपने बेहतर भविष्य को सुरक्षित कीजिए।
1: ...89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: आप सुन रहे इस वक्त रेडियो डीएस 89.6 पर गंगापुर सिटी का तड़का, मनोरंजन का सरताज अपने आप के ऋषि मीना के साथ। बने रहे बेहतरीन मनोरंजन और वर्तमान जानकारियों, सेहत भरी बातें और जानकारी के लिए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डीएस साइंस अकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर। परिणाम और विश्वास का दूसरा नाम।

दोस्तों फिलहाल आप मेरे साथ उनका 99.6 रेडियो डीएस कंकापुर सिटी का तड़का पर मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों रेडियो डीएस 99.6 की ओर से खास जन्मदिन शुभकामनाएं। आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज हमारे गेस्ट मेहमान का यानी अंतिमा जोशी जी का जन्मदिन है। रेडियो डीएस 89.6 परिवार की ओर से अंतिमा जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर से हमारी यही कामना है कि आपका जीवन खुशियों से, सफलता से, अच्छे स्वास्थ्य से और खूबसूरत यादों से हमेशा भरा रहे। आप मुस्कुराते रहें, यूं ही खिलखिलाते रहें, हर नया दिन आपके जीवन में खुशियां लाता रहे। जन्मदिन के इस खास मौके पर रेडियो डीएस 89.6 की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे अंतिमा जोशी जी।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग,
3: 89.6 पे
2: रेडियो DS 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: इस वक्त आप ट्यून कर रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। और दोस्तों अपना रेडियो सेट छोड़कर ना जाइए, आपके साथ आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना जल्द करेंगे आप सभी की फरमाइशों को पूरा। बने रहे हमारे साथ रेडियो डीएस पर। फिलहाल आप कार्यक्रम सुन रहे हैं लू फरमाइश
1: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
1: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6
2: गंगापुर सिटी की धरती पर रेडियो डीएस।

के साथ ट्यून इन कर रहे हैं रेडियो DS89.6 पर गंगापुर सिटी का तड़का और सवाई माधोपुर का पहला स्टेशन गंगापुर सिटी का मनोरंजन का सरताज आपके अपने रेडियो दोस्त ऋषि मीना के साथ। दोस्तों आप सभी हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है DS साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी, परिणाम और विश्वास का दूसरा नाम।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
1: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6
2: गंगापुर सिटी की धरती पर रेडियो डीएस।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: आप सुन रहे इस वक्त रेडियो डीएस 89.6 पर गंगापुर सिटी का तड़का, मनोरंजन का सरताज अपने आपके ऋषि मीना के साथ। बने रहे बेहतरीन मनोरंजन और वर्तमान जानकारियों, सेहत भरी बातें और जानकारी के लिए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डीएस साइंस अकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर। परिणाम और विश्वास का दूसरा नाम।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम बताएं।
1: सेना
0: सनाज जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: जय कॉलोनी रोहिणा
0: पता है सनाज जी कौन सा गाना सुनना चाहते हैं? रोहिणा? बिल्कुल
1: जी,
0: सुना रहे हैं आपकी फरमाइश का ये गाना रेडियो डीएस में। खुल के बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू।
0: वेलकम।

0: हर बीट में है शहर का कमाल DS89.6 शहर की धुन
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DS FM पे
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6
0: शहर का नया मैजिक रेडियो DS 89.6
3: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो DS गंगापुर सिटी का तड़का मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5 दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5 दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए
0: शहर का नया मैजिक रेडियो DS 89.6
4: गंगापुर सिटी से
5: बताए सर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं
4: कोई सपना
5: नाम बताए सर
4: अंकिता कुमारी गुर्जर
5: अंकिता जी कहाँ से बात कर रहे हैं
4: गंगापुर सिटी
5: बताए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप
4: नजरार मरेगी रे
5: बिल्कुल सुना रहे हैं हेलो नाम बताए
4: नेहा गुर्जर
5: नेहा जी कहाँ से बात कर रहे हैं
4: गंगापुर सिटी
5: बताए नेहा जी कौन सा गाना सुनना चाहते हैं
4: नजरार मरेगी रे
5: बिल्कुल सुना रहे हैं नेहा जी आपकी फरमाइश करता हूँ
4: ओके

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।

दोस्तों 10:32 का समय हो चुका है। फिलहाल आप मेरे साथ ट्यून कर रहे हैं 99.6 रेडियो ओडीएस गंगापुर सिटी का तड़का पर। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों बहुत सारे भाइयों का और बच्चियों का देखने में आया है कि स्टूडियो के नंबर पर अधिक से अधिक ज़्यादा कॉल एक फरमाइश करने के बाद में भी करते रहते हैं, तो प्लीज़ ऐसा ना करें, इतना डिस्टर्ब ना करें। आपसे अपील है कि आप एक कॉल जब आपकी पूरी रिकॉर्डिंग हो जाए, नाम जगह और गाना पूछ लिया जाए, तो उसके बाद कॉल करने की आवश्यकता नहीं होती है। एक रैंडम पद्धति के अनुसार आपका क्रमबद्ध तरीके से गाने चलते हैं। आपका भी समय बर्बाद ना करें और हमारा भी ना।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी। हेलो
1: हेलो,
0: जी, नाम बताएं।
1: लक्ष्मी शर्मा,
0: लक्ष्मी जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: सैनिक
0: बताएं लक्ष्मी जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो से?
1: जादूगरनी।
0: जादूगरनी सॉन्ग?
1: हाँ
0: बिल्कुल सुना रहे हैं मैम आपको। आपकी फरमाइश का ये सॉन्ग रेडियो डेट्स में खुल गया, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS89.6 शहर की धुन।
2: हेलो,
3: नाम बताएं सर।
2: मेरा नाम प्रियांश मीना है।
3: कहाँ से बात कर रहे हैं सर?
2: जी, मैं मलाना डूंगर मानवाली से बात कर रहा
3: हूँ। बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
2: मैं सुनना चाहता हूँ सोनी म्यूजिक का एक नया गाना बरसात।
3: कौन सा गाना है?
2: बरसात।
3: बरसात, बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी प्रमाइज का ये गाना।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम बताएं।
1: शहनाज
0: सनाज जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: जय कॉलोनी
0: बताएं सनाज जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: रोहिणा
0: रोहिणा? बिल्कुल
1: जी।
0: सुना रहे हैं आप।
2: की रह गया सी एही बस जो तमाशा करन आ गया। चला जाए तो चला जाए।

0: हेलो
1: हेलो,
0: जी, नाम बताएं।
1: लक्ष्मी शर्मा,
0: लक्ष्मी जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: सैनिक नगर,
0: बताएं लक्ष्मी जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस से?
1: जादूगरनी।
0: जादूगरनी सॉन्ग?
1: हाँ
0: बिल्कुल सुना रहे हैं मैम आपको, आपकी फरमाइश का ये सॉन्ग रेडियो डीएस में कुल किया, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो,
0: जी नाम बताए।
1: गुलशन
0: गुलशन जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: गंगा सिटी।
0: बताए गुलशन जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो पे?
1: मेरे महबूब मेरे सनम शुक्रिया मेहरबानी करम।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं।

0: से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS, 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
3: नमस्ते
4: सर। नमस्ते, नाम बताएं आपका।
3: हाँ जी, ठंडे राम गुजर हो रहा हूँ।
4: ठंडी राम जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
3: कहाँ बदर क्या से
4: बताएं। ठंडी राम जी कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस पे?
3: हर गाने के बोल है, गोरों की ना कालों की दुनिया है दिल वालों।
4: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी।

0: हेलो
1: हेलो सर जी नमस्कार।
2: टुडे फनियर
0: प्रीति जी गंगापुर सिटी से बताएं। प्रीति जी कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस से?
2: सर इश्क दे फनियर।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं प्रीति जी आपको, आपकी फरमाइश कैसे रेडियो।

0: इनाम बताएं सर
1: जी। चौधरी बोल रहे हैं महावीर जी।
0: चौधरी जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस पे?
1: गाना तो सर सफर इतलाए हैं।
0: बताएं सर।
1: घर से निकलते ही
0: कुछ दूर चलते ही।
1: वेरी गुड सर, यही है।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पे बेहतरीन सा गाना रेडियो डीएस पे सुनते रहे।

0: रहिए दिल से दिल तक 89.6 DS FM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन।
3: हेलो,
4: नमस्ते सर।
3: जी नमस्ते, नाम बताएं।
4: शिवम।
3: कहाँ से बात कर रहे हैं?
4: गंगापुर सिटी।
3: गाना बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
4: रोहतक 3।
3: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश पर ये गाना।
5: मैं सबसे आया किसी को साथ न लाया, रोहतक पर जब मैंने अपना कब्जा जमाया और दोनों चूहों पर अपना जाल बिछाया।

0: हेलो
1: जी, नाम बताएं।
0: आरबी जी
1: कहाँ से बात कर रहे हैं? बताएं मैम, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: ऐसी आवाज का था।

दोस्तों, वक्त हो चुका है 11:16 का। इस वक्त आप मेरे साथ ऑन करें 99.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस।

0: हेलो सर जी।
1: जी नमस्ते, नाम बताएं सर आपका।
0: नाम सत्यनारायण गुप्ता।
1: गुप्ता जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: चंद्रापुर से।
1: बताएं सर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं
0: आप? फकीरा का।
1: बिल्कुल सुना रहे
0: था मैंने की कहानी पुरानी से पुरानी।
1: हाँ जी कौन सा गाना है?
0: सोता मैंने की कहानी तो पुरानी हो गई। फकीरा।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
2: हेलो,
3: नमस्कार सर।
2: सर नमस्ते, नाम
3: सैजाद खान पुरानी इंडिया।
2: सैजाद जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं सर?
3: लैला मजनू का लिखा हुआ एक गाना।
2: बताएं सर कौन सा गाना है?
3: बढ़िया जी कव्वाली देख लेना लैला मजनू।
2: ओके सर, सुधार है आपकी फरमाइश का इस वक्त।

0: हेलो,
1: नाम बताएं सर।
0: हरिओम।
1: हरिओम जी, कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: गंगापुर।
1: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: कौन सा गाना सुनना चाहते हैं? मेरी गेल यार का नेम चले बगाड़।

0: हेलो।
1: हेलो
0: जी, नाम बताएं।
1: प्रिंस मीना।
0: कहाँ से बात कर रहे हैं सर?
1: गंगापुर सिटी से।
0: सर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
2: पागल। पागल। पागल। पागल। पागल। पागल। पागल। पागल।

0: हेलो,
1: नाम बताएं सर।
0: सोनिया।
1: हाँ जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: वासिम शर्मा।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर।

0: जोर से बोले सर, आवाज कम आ रही है, क्या नाम है आपका?
1: अभिषेक मीना।
0: अभिषेक मीना कहाँ से बात कर रहे हैं? ठीक है, गाना बताए।
1: महिला मित्र।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं।

0: हेलो।
1: हेलो
0: जी, नाम बताएं।
1: नितिन गोठवाल।
0: गोठवाल जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: गंगापुर सिटी।
0: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: नामी गुंडे।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर।
2: गुलाब का नहीं, गन का है, गन का। फ्लावर का नहीं, फायर का है, फायर का। सरफत का नहीं, गुंडा बन, गुंडा
3: भाई, गुंडा बनना है, गुंडा। गुंडा गुंडा बनना है, गुंडा गुंडा बनना है, गुंडा।

0: हेलो, नाम बताइए सर।
1: हाँ,
0: नाम बताइए सर आपका।
1: अरुण,
0: कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: गंगा पर सूती से।
0: गाना बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: बादलों से होती उड़ान उनकी।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी सुनाई। सही गाना

0: नाम बताइए सर।
1: हाँ
0: नाम बताइए सर आपका।
1: अरुण।
0: कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: गंगा पर सूती से।
0: गाना बताए सर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: बादलों से होती।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर। हेलो
2: पबी पबी

0: हेलो,
1: नाम बताइए सर।
0: कृतिका मीना,
1: कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: गंगापुर सिटी।
1: बताएं मैम, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: पल पल जीना मुहार।

दोस्तों वक्त हो चुका है 11:51 का और दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाई 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो डीएस।
3: दोस्तों वक्त हो चुका है 11:53 का। इस वक्त आप मेरे साथ ऑन कर 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपके रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाइश 89.6 रेडियो डीएस पर। दोस्तों कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमारे पास आइए पूनम शर्मा जी की। पूनम शर्मा जी ने हमें कॉल किया है दिल्ली से। आज उनकी छोटी सिस्टर का जन्मदिन है अंतिमा जोशी का, तो उनके लिए उन्होंने एक गाना डेडिकेट किया है। तो सुनते हैं इनकी फरमाइश पर ये गाना 89.6 रेडियो डीएस पर।
4: ना ना हुण मेरी गल क्यों सुननी है, करी चलो इग्नोर, मेरी तो कोई इंपॉर्टेंस हैगी ही नहीं।

0: हेलो
1: जी, नाम बताइए।
0: हाँ भैया, योगेश जांगड़े पे मैं करा छत्तीसगढ़ से
1: योगेश जी बताइए, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
0: आया सावन झूम के सुनवा देंगे।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर, आपकी फरमाइश कैसे?
0: धन्यवाद।
1: वेलकम।

0: हेलो,
1: हेलो
0: नाम बताएं,
1: कोमल गंगापुर
0: कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: सिटी भोलेने
0: बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं कोमल जी?
1: पर पूज कर रहे हैं।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं मैम।

0: प्यार की लड़ाई।
1: हेलो।
2: हेलो
1: जी, नाम बताएं सर।
2: अमन मीना।
1: कहाँ से बात कर रहे
2: हैं? गंगापुर सिटी।
1: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
2: हाउ ब्लेस
1: सुना रहे हैं सर।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम बताएं सर।
1: अमन मीना।
0: कहाँ से बात कर रहे
1: हैं? गंगापुर सिटी।
0: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: हाउ ब्लैक।
0: सुना रहे हैं सर। नाम बताएं सर।
2: नाम बोला।
0: कहाँ से बात कर रहे हैं?
2: कुंजीला।
0: कुंजीला गाँव से?
2: हाँ।
0: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
2: 295 सद्दू।
3: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
3: बलराम मीना।
1: कहाँ से बात करें?
3: गंगापुर सिटी से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहते?

0: हेलो
1: हेलो,
0: नाम बताएं।
1: नाम शिवम।
0: शिवम कहाँ से?
1: गंगापुर।
0: बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: सर मीना की चल सकते हैं?
0: नहीं सर, नहीं।
1: तो बदमाशी सॉन्ग चला दो।

0: नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
1: सालिम खान।
0: कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: लोगो का गाना।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: तेरी याद।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।
1: थैंक यू।

0: हेलो,
1: नाम बताएं।
0: मोनिका।
1: कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: गंगापुर सिटी।
1: बताएं मैम, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: ये मेहंदी के बूटे इनके रंग अनोखे।
1: ठीक है मैम, सुना।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: दिलीप।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: मैं की कॉलोनी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: दिल दे बेटी एक छोरे।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS।

0: शंगर के लकड़ी वा परफेक्ट कतल के हो रहे थे आसार। शकल ते खूब वा सूरत थी वा चोरी करे हुसन ते वार। हुसन ने तार बगा दी चुन्नी देख मेरी।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का सुर।
3: हेलो
4: हेलो,
3: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
4: मुस्कान।
3: कहाँ से बात कर रहे हो?
4: गंगापुर सिटी।
3: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
4: कमर डीजे पे।
3: ओके।
0: शंगर के लकड़ी वा परफेक्ट कतल के हो रहे थे

0: हेलो। हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: विवेक मीना।
0: कहाँ से बात कर रहे
1: हो? मैं बात कर रहा हूँ गुजरात से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM।
1: बरसों हो गए बिछड़े, अब साथ नहीं हो तुम।
2: दोस्तों वक्त हो चुका है 12:31 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 23 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों आपने मेरे साथ सुने थे अभी हेलो फरमाइश। और दोस्तों मिलते हैं 1 बजे नए तरह नए कार्यक्रम के साथ।
1: तुम भी

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो डीएस, 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
3: गुड आफ्टरनून दोस्तों। दोस्तों वक्त हो चुका है 1:00 इस वक्त आप मेरे साथ टून करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम हेलो फरमाइश, अब थोड़ी देर में आप सुनोगे कार्यक्रम नहे तराने 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS।
3: दोस्तों वक्त हो चुका है 1:03 का। इस वक्त आप मेरे साथ टून करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 31 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों आज बात करते हैं महिलाओं के अधिकारियों के बारे में। दोस्तों बात करते हैं ग्रामीण महिला हमारे समाज की असली ताकत होती है। वे खेतों में काम करती है, घर घर संभालती है और परिवार को आगे बढ़ाती है, लेकिन कई बार उन्होंने उनका अधिकार की जानकारी नहीं होती, जिससे वे शोषण का शिकार हो जाती हैं। अधिकार महिलाओं को अधिकार जरूरी होता है। यदि महिलाओं को उनके अधिकार मिलना हो तो वे आत्मनिर्भर बनती है, जैसे सम्मान, सुरक्षा, आर्थिक स्वास्थ्य, आत्मविश्वास देती है। कानून अधिकार महिलाओं को, ग्रामीण महिलाओं को भारतीय कानून की तहत पर कई अधिकार प्राप्त होते हैं। सभी महिलाएं कानून की नज़र में बराबर होते हैं। महिलाओं को प्रत्येक संबंधी वे संपत्ति में अधिकार भी मिलता है। घरेलू हिंसा व शोषण पे सुरक्षा के द्वारा दी गई है समान। समान कार्यों के लिए समान वेतन का अधिकार होता है। ग्रामीण महिलाओं की चुनौतियां, ग्रामीण महिलाओं में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आशंका, गरीबी, सामाजिक भेदभाव, भी स्वास्थ्य व सुविधाओं में कमी, रोजगार की कमी, शिक्षा की भूमिका महिलाओं में, ग्रामीण महिलाओं के जीवन को बदलाव एक शिक्षा की भूमिका ला सकती है। अपने अधिकार समझती है और गलत के खिलाफ उठाई जाती है आवाज। महिलाओं का स्वास्थ्य व पोषण, ग्रामीण महिलाओं के लिए स्वास्थ्य व सेवाएं बहुत जरूरी होती है। सरकार आंगनवाड़ी केंद्र के स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से पोषण व चिकित्सा सुविधा देती है। रोजगार व आत्मनिर्भरता, महिलाओं का आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई योजनाएं बनाई गई है, जैसे स्वास्थ्य सहायक समूह, मनरेगा और कौशल विकास कार्यक्रम। घरेलू हिंसा के लिए सुरक्षा, घरेलू हिंसा का अधिनियम ग्रामीण महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करता है। यदि किसी महिला के साथ हिंसा होती है तो वे कानूनी मदद ले सकती है। समाज की जिम्मेदारी, समाज में महिलाओं को बराबर सम्मान देना चाहिए, बेटियों को पढ़ाना चाहिए, महिलाओं के निर्णय लेना चाहिए, उनके अधिकार का समर्थन करना चाहिए। दोस्तों मिलते हैं थोड़ी ही देर में ब्रेक के बाद एक गाना

0: 89.6 DSFM पे
1: हर बीट में है शहर का कमाल DS89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
3: दोस्तों वक्त हो चुका है 1:11 का और दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों बातचीत चल रही थी घरेलू ग्रामीण महिलाओं के बारे में, तो घरेलू हिंसा महिला समाज की एक ऐसी समस्या है जो अक्सर घर के चार दीवारों के भीतर छिपी रहती है। कई महिला ग्रामीण महिलाएं बरसों तक अपने अत्याचारों को सहती रहती है, लेकिन वे समाज के डर या परिवार की चिंता के कारण आवाज नहीं उठा पाती। इस समस्या में महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए घरेलू हिंसा से संरक्षण कानून बनाया गया है। घरेलू हिंसा के कई कारण होते हैं, दहेज की मांग, शराब या नशे की लत में पुरुष प्रधान सोच, आर्थिक तनाव, अशिक्षा, महिलाओं को कमजोर समझना। जब परिवार में ग्रामीण महिलाओं का सम्मान व सम्मानता की कमी होती है तब हिंसा जन्म लेती है। घरेलू हिंसा के प्रकार होते हैं। घरेलू हिंसा में केवल शारीरिक मारपीट नहीं, इसके कई रूप होते हैं। जिस तरह ग्रामीण महिलाओं में मारना, धक्का देना या चोट पहुंचाना, बराबर अपमान करना, गाली देना या डराना, महिलाओं को पैसे ना देकर उन्हें कमाई का अधिकार जमाना, महिलाओं को अकेला महसूस कराना, उनका भावुक भावुक को ठेस पहुंचाना घरेलू हिंसा के कारण विशेष। घरेलू हिंसा में ग्रामीण महिलाओं का संरक्षण अधिनियम महिलाओं के तुरंत सहायता प्रदान करता है। इसी कानून के तहत पर ग्रामीण महिलाओं अदालत में शिकायत कर सकती है, पुलिस सहायक प्राप्त कर सकती है और संरक्षण अधिकार के लिए मदद ले सकती है, रहने और आर्थिक सहायता का अधिकार पा सकती है। ग्रामीण महिला अपने परिवार और समाज का आदर्शील होती है। यदि घर में महिला सुरक्षित नहीं होती तो परिवार का वातावरण भी सुरक्षित नहीं रहेगा। एक सुरक्षित महिला अपने आत्मविश्वास, शिक्षा, रोजगार, समाज सेवा में आगे बढ़ सकती है और अपने बच्चों का भविष्य भी बदल सकती है। घरेलू हिंसा का प्रभाव सबसे अधिक बच्चों पर पड़ता है। जो बच्चे हिंसा देखते हैं वे मानसिक तनाव और डर का शिकार हो जाता है। इसी कारण घरेलू हिंसा रोकना, बचाना, भविष्य की रक्षा करना चाहिए। ग्रामीण महिलाओं में कानून के साथ जागरूकता जरूरी होती है। केवल कानून बनाना देना प्राप्त नहीं होता, लेकिन जरूरी यह है कि महिला अपने अधिकार को प्राप्त जागरूक हो। समाज को कई समस्याएं होगी कि हिंसा की किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। पुरुषों की जिम्मेदारी, घरेलू हिंसा रोकने में पुरुषों की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। उनके महिलाओं का सम्मान करना चाहिए और परिवार संभालना चाहिए और उनका वातावरण बनाना चाहिए। और ग्रामीण महिलाओं में समाज में बदलाव की आवश्यकता जरूर होनी चाहिए। हमें अपनी सोच बदल लेनी चाहिए। बेटियों को बोझ नहीं बल्कि शक्ति समझना चाहिए। महिलाओं को सम्मान व स्वतंत्रता देनी होती है। जब महिलाएं समाज में समानता का सम्मान बढ़ जाता है तब घरेलू हिंसा समाज कम हो जाता है। धन्यवाद। सुनते हैं अगले गाने के साथ, मिलते हैं दोबारा।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.

0: से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।

0: का सरताज है।
1: दोस्तों वक्त हो चुका है, दो बज चुके हैं। इस वक्त आप मेरे साथ टून कर 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 32 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरी साथ सुने थे कार्यक्रम नहे तराने, अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे कार्यक्रम भूली विसरी यादें 89.6 रेडियो डीएस पर।

दोस्तों वक्त हो चुका है 3 बज चुके इस वक्त आप मेरे साथ टून कर 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 32 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम भूली विसरी यादें। अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे कार्यक्रम बैक टू वे गाने का 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM में।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वर 89.6। यहाँ बीट में है सिटी का स्वर 89.6 पे रेडियो DS।

अलसियास। और दोस्तों, अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम बैक टू वे गाने का। अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे कार्यक्रम राजस्थानी 89.6 रेडियो डीएस पर। दोस्तों, हमारी स्टूडियो कॉलिंग लाइन चालू है, आप कॉल कर अपनी फरमाइशों को दर्ज कराएं।

दोस्तों वक्त हो चुका है 3:04 का और दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 32 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम राजस्थानी 89.6 रेडियो डीएस पर।

यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस, 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो डीएस।
3: दोस्तों वक्त हो चुका है 4:29 का। इस वक्त आप मेरे साथ टून करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 32 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले आपने मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम राजस्थानी, अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे कार्यक्रम आपका मनपसंद हेलो फरमाइश।
4: क्या है आपका?
5: धनीराम गुजर बोल रहा हूँ, राम भदंगा से।
4: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
5: कर लो प्यार, प्यार गलत की चीज है, कर लो।
4: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।
5: ओके सर।

0: हेलो
1: परम आदरणीय दीदी, सादर सप्रेम प्यार है, नमस्कार।
0: सर, नमस्ते सर। नाम क्या है आपका?
1: मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति, गोवर्धन रोड मथुरा से वार्तालाप कर रहा हूँ। दीदी, आप कैसी हैं?
0: सर मैं ठीक हूँ, और आप कैसे हो?
1: मैं भी बहुत अच्छा हूँ, आपका आशीर्वाद बांके बिहारी कृपा है। और आज गाना सुनना चाहता हूँ।
0: जी
1: जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं, भीड़ है कयामत की और हम अकेले हैं। बहुत ही सुंदर प्यारा
0: ओके
1: गीत
0: सर,
1: आपने
0: सुना रहे हैं
1: बताया।
0: आपकी फरमाइश पर। ये गाना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार।
0: नमस्ते।

0: हेलो
1: सर, नमस्ते।
0: नमस्कार।
1: नाम क्या है आपका?
0: बाबू खान।
1: कहाँ से बात कर रहे
0: हैं? गंगापुर सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
0: याद में तेरी जाग जाग के हम।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DS FM पे। हर बीट में है शहर का कमाल। DS 89.6।

0: सर नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
1: नाम तुलसीराम मीना, ग्राम पीलूखेड़ा से।
0: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: एक रोज मैं तड़फ कर इस दिल को थाम लूंगा।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना। रेडी डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद मेरी बहन
0: जी। वेलकम सर।

0: सर नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
1: नाम साबिर है, दर्शक मैदान से बोल रहा हूँ, गंगापुर से।
0: हाँ जी सर, कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: गाना है घुंघरू फिल्म का मुजरा है, तोहफा कबूल है हमें सरकार आपका।
0: तोहफा कबूल है हमें,
1: हमें सरकार आपका।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश, करिएगा ना।
1: ठीक है, धन्यवाद।
0: यू वेलकम।

0: हेलो
1: हाँ जी सर, नमस्ते
0: जी। नमस्ते जी,
1: सर। नाम क्या है आपका?
0: मोहम्मद हारून बोल रहा हूँ। छोटा गांव है, ग्राम अकबरपुर, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश, एमपी से। फिल्म
1: हाँ जी सर, कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: का नाम है आंदोलन,
1: यानी के बोल
0: उसमें से आप कोई सा भी चला देना, कुमार सानू को गाया हुआ भी। जी
1: आंदोलन में से।
0: जी
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।
0: जी धन्यवाद।
1: वेलकम सर।

0: हेलो दीदी, राधे राधे।
1: दीदी राधे राधे, नाम क्या है आपका?
0: मेरा नाम समता जादौन है, मैं बाड़खला से बोल रही हूँ।
1: हाँ दीदी, और कैसे हो?
0: अच्छी हूँ, ठीक हूँ दीदी, आप कैसे हो?
1: बारिश कैसी हो रही है अब तो बाड़कला में?
0: बाड़खला में 2 दिन से नहीं हुई है बारिश, तो
1: हाँ, 2 दिन से यहाँ पर नहीं हो रही, कल और आज तो बिल्कुल भी नहीं हुई।
0: आज
1: उमस हो रही है बहुत
0: इतनी
1: ज्यादा।
0: जोर से धूप खिली है, बहुत
1: हाँ,
0: भयंकर।
1: धूप बहुत तेज खिल रही है।
0: अब
1: कौन सा
0: पता
1: टाइम
0: नहीं
1: है?
0: दीदी, गर्मी भी बहुत पड़ रही है।
1: गर्मी दीदी कल से ही हो रही है, यहाँ पर भी हो रही है। हाँ
0: हाँ ऐसे ही
1: जी, कौन सा गाना सुनना चाहोगे आज?
0: सुनना है। ए हवा ये बता, क्या तुझे है पता, अब की बरस जो बरसेगा वो सावन कैसा होगा, सावन जैसा भी हो मेरा साजन कैसा होगा।
1: ओके ओके दीदी, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।
0: थैंक यू।
1: यू वेलकम।

0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: आलू।
0: कहाँ से बात कर रहे
1: हो? गंगापुर से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: चम्मड़ की घाटी।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करे।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: गौरव मीणा।
1: कहाँ से बात कर रहे
0: हो? सुनापुर से जी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: कतल करण की नजर तेरी।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश। परेश

0: मैजिक रेडियो डी एस 89.6
1: गंगापुर सिटी की धरतल रेडियो
2: डी एस
3: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डी एस।

0: का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: गंगापुर सिटी की धरतर
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे

0: मैजिक रेडियो डी एस 89.6
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डी एस।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: गंगापुर सिटी के घर पर
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: गंगापुर सिटी की धरतल
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे

जब खुदा किसी को बनाता है ना, तो उसमें कुछ खास बात होती है। लेकिन खुदा ने अदा को बनाया, इसीलिए वो खास बात खुदा में है।

0: न जाऊं उसकी भैन, सारी आंसुओं में रह जाए। आंख नू रखे जनु आखा तय खावेगा, कदे प्यार ते बात ही नहीं करता ढंग ते, दमाद ना यो गुंडा दमाद है।
1: हीरा सह हीरा मेरा जमाई, लाखा में एक सह, ऐसे से जमाई हरेक ने न मिला करते, किसे किस्मत आले ने मिला करें।